0: 7997877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Code, Bolton, 9059519394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
2: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
3: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
2: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पाठ जागो अते वेडिंग ली अज ही केटरिंग बुक करो 9059562111, 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस। ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
3: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
2: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
4: एडवरटाइजमेंट करनी है, अपने बिजनेस नु प्रमोट करना, टीम नाल संपर्क कर सकते हो 6478352549467835529464 संपर्क कर सकते हो।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दिया ते मसलिया ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगिया सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7063 ते 416-917-7763

0: रात हम छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेड़े कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 874

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900
1: मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
2: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी तो ठीक है इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट इन पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
0: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 Brampton 9054586808

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566। नोबेल फ्रेश फूड।

0: क्या बात, तो कट्ठे होके तिया ते बहना बहुत सारे ने कई मैं क्या कई साल साल बाद कट्ठिया अपने कम उन्हों का दिन है उस दिन बहुत बहुत जिथे जी आया सारे वालों सारे लिसनर वालों सारे स्पॉन्सर सारे मीडिया वालों थानू कैनेडा टोरंटो उथे हूँ अपने वालों सदा पत्र तुम हम लेडीज नपे सदो उस दिन लिये
1: मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हाँ सीरियसली क्योंकि असी जैसमीन पहला भी गल कर रहे सी मैं ए 6-7 साल हो गया उदों दी वेट करदी करदी फाइनली मेरी बारी आई है इस शो दे विच आउण दी ते मैं सुपर एक्साइटेड हाँ प्लीज सारियां जनियां सोहनिया सोहनिया बन के आज असी भी सोहने सोहने सूट पा के रेडी होके आवांगे धमालां पैणगियां बोलियां पैणगियां
0: बिलकुल जी और जैसमीन जी उधरों मैसेज आ रहे हैं कि फ्लाई करके आए हो तो फ्लाई वाला गाना नहीं
2: तुसी कर। हाँ जी फ्लाई करके पहुंच चुकी हैं ते हुण तुसी भी पहुंच जाओ इक्की नूं मैं फ्लाई सुनानी है थानू।
0: हाँ।

0: 32, 55, 80, 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते।
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 9054502828, 9054502828।
4: होलसेल क्लब विच कीमतां घट हो रहियां हन।
5: अल्ला नालों भी घट।
4: ए वेखो, 13.6 किलो सनस्पन स्ट्रेट कट फ्राइज सिर्फ $33.99 विच।
5: ए तां होर भी घट है।
4: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तों भी घट।
5: ओए तू किथे जा रही है?
4: अपने बिजनेस लई पैसे बचाओ।
6: तुहाडे बिजनेस लई पैसे बचाउणा साडा बिजनेस है, इस लई असीं कई आइटम्स दीआं कीमतां घट कर रहे हां। कोई फीस नहीं। होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो।
7: Wholesale Club, whole lot of value.
8: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
9: Without fear. Without hate.
10: Akal Murat.
9: Omnipresent.
10: Ajoni Sepam.
9: Immortal.
10: Guru Parasad.
9: Through his grace.
10: Japu.
9: Thou shalt worship the eternal truth.